या कि दादा मेरे कि मुस्को दोला कि बीमारी बाजे कि जीस तुरो टारुवी लगा सिगिले अबे हाँ टारुवी लगा सिगिले अबे हाँ।